0: कादूर चाले ता दिसे खरा दरावना बारोगुन कछुता उना बारोगुन कछुता
1: हे मन हर जीत्याए तो एक मन एक चित

0: तन समान स्नान का जोगा चले पाए। चौंकण मुन अनाया बै चौंके पाया, सिकां कर चढ़ाया गुरु ब्रह्म थिया। ओ मुआ चढ़ पया वे तगा गया महला पहला।
1: लख चोरियां लख यारियां लख कूड़ियां लख गाल, लख ठगियां पैना मियां रात दिन सजीनार। तक पौकती ब्राह्मण वटे आए, कोहे बकरारे न खाया सब को आखे पाए। होए पराना सटी है फिर फिर पाई है होर, नानक थगना तुटे जी तक हो वै जोर।

चक लगे चाकरी जे चले खस में पाए तुम कुछ न गले वजो पे दुना खाए खस में करे बराबरी फिर गैर तंदर पाए बुझो गाय अगला महीनो पाना खाए जिस ताता खावना तिस कहिए सबास नान खुक न चले नाल खसम चले अरदास।

बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चिराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसा स्वासा नाल निवाही तिना दी कमाई दा ध्यान तर के खालसा जी बलो जी वाहे गुरु बलो जी। पंजा तख्तां सरबत गुरद्वारिया

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चक्र चिहन अर बरन जात अर पात नहन जेह रूप रंग अर रीख पीख को कह ना सकत केह अचल मूरत अनभउ प्रकाश अमितोज कह जै कोट इंद्र इंद्राण साहि साहान गणिजै त्रिपावन महीप सुर नर असुर नेत नेत बान तृण कहत

जिह सतगुर सिमरंत नैन की तिमर मिटह खिना। जिह सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिना। जिह सतगुर सिमरंत जीय की तपत मिटावै। जिह सतगुर सिमरंत

वास सुवास निवास है, काउ हंस न उरा, कुघू सोज सुजाइंदा, शंख मोती चूरा, वेद कति बहु बाहरा, गौर शब्द हजूरा, वेद कति बहु बाहरा,

नानक कृपा करके मिले, विछुड़ कदे न जाई। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। राग सूही महला चौथा, शांत घर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सतगुर पुरख मिलाए। अवगण विकणा गुण रवा, बाल राम जीओ। हर हर नाम त्याए,

ते मुख जले किती छुट्टी नाल। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

0: सर्व कला भरपूर दिसै जत कता नानक दासन दास दया गै बिनवता।
1: सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दय दाई दाया खेलै सगल जगत चंगियाईयां।

सागर तुम्हार जानो अपे हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता। गुर सतगुर संग कीरे हम थपे हम अवगुण परे एक गुण नाही अमृत शार दिखे दिख खाई माया मोह परम पै भूले सुतदारा प्रीत लगाई।

0: और तेरा मर्तबा, रंग बरंगा नेक न जापन करतबा, जिया अंदर जियो सब कुछ जान ला, सब कुछ तेरे बस तेरा कर पला, तेरे करना दुदाई दुद कर, मान महत्ता ते जे अपना आप जर, सर्व कला भरपूर दिस जतकता, नानक दासन दास ਗਹਿ ਬਿਨਵਤਾ।
1: ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਭਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਂ ਬੁਰਿਆਂ।

मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुटे ना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

कोई ना किस की धरे आन सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर काहे मन भाव करे आन ऊडे ऊडे आवे सह कोसा तिस पाछे बचरे शरे आन तिन कवन खला।

राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगम अगम अपार सब त्यावह सब त्यावह तुध जी हर सच्चे सिरजनहार सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातार हर त्यावहु संत हो जी सब दुख विसारण हार हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचार तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समान एक दाते एक भेखारी जी सब तेरे चोज विडाण तू आपे दाता आपे भुगता जी हों तुद बिन अवर ना जान तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख बखाण जो सेवह तुद जी जन नानक तिन कुरबाण हर त्यावह हर त्यावह तुद जी से जन जुग मह सुखवासी से मुकत भए जिन हर त्याया जी तन तूटी जम की फासी जिन निरभौ जिन हर निरभौ त्याया जी तिन का भौ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंत तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंत तेरी अनक करह हर पूजा जी तप तप है जप है बेअंत तेरे अनेक पढ़ है बहु सिमरत शास्त्र जी कर किरिया खट कर्म करंत से भगत भले जन नानक जी जो भावह मेरे हर भगवंत तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड़ अवर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निःचल करता सोई तुद आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे करहै सो होई तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सहका जानोई आसा महला चौथा तू करता सचियार मैडा साई जो तो भावै सोई थीसी जो तू देहे सोई हो पाई रहाओ सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनो कृपा करहै तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मन मुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे जी जंत सब तेरा खेल बिजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल जिसनो तू जाना एह सोई जन जाने हर गुण सद ही आख बखाने जिन हर सेव्या तिन

ब्रह्मा शरण परे की राखो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह। पातशाही दसवीं कवियो बाच बेनती चौपई। हमरी करो हाथ द रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतपार। हमरे दुष्ट सबै तुम काव हो, आप हाथ दे मोहे बचाव हो। सुखी वसै मोरो परिवार, सेवक सिख सबै करतार। मोर अच्छा निज कर दे करिए, सब वैरण को आज संघरिए। पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो वर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिय है, चुन चुन सत्र हमारे मारिय है। आप हाथ दे मुझे उवरिय, मरण काल का त्रास निवरिय। हो जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जो करियो रक्षा। राख लेहो मोहे राखण हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कांता। काल पाए ब्रह्मा बप धरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विष्ण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी सब कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैंत जच्छन उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोहद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचरी असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, घट घट के पट पट की जाने। जब उद करख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपार। जब आ करख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारै, आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्वकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूड उचारत भेदा, जाको भेव न पावत वेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कश भेद न जानत। महादेव को कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, किह बिद सजा प्रथम संसार। एक रूप अनूप स्वरूप, रंग भयो राव कही भूप। आंडज जेरज सेतज कीनी, उत्पुज खान बहुर रच दीनी। कहूँ फूल राजा हवै बैठा, कहूँ सिमट भयो शंकर अकैठा। सिगरी श्रेष्ठ दिखाई अचंपव, आद जुगाद स्वरूप स्वयंपव। आव रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संघरो। दोष्ट जीते उठवाती उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुझ तब शरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत हुए मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्यै है, ताके काल निकट नह है। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काल।
कृपा दृष्ट तन जाहे निहार हो, ताके ताप तनक मह हर हो। रिद सिद्ध कर्म सब होई, दुष्ट शाह स्व सके न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फांसते ताहे उवार। जिन

होई, दोष्ट दोख ते लेहो बचाई। सवैयन पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आँख तरे नहीं आने। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहें मत एक न मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सबै, बहु भेद कहें हम एक न जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं न कहियो

ज्यों जानु हो त्यों राख। हार प्राव तेरे केते गनो असंख, आवगण मेरे असंख आवगण खते फेरे, नेत परत सद भूलिए, मोह मगन बिकराल माया,

सुख जाय होए सिफत खसामंदी नूर अरसों कुरसों चटी तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी सजन सचा पातशाह सिर सांद जिस पास बैठिया सोही है सवना दा विसाहु सजन सचा पातशाह सिर सांद

हमरी बेदन तू जानता सा है, अवर क्या जाने कोए। रहाओ साचा साहिब, सच तू मेरे साह, तेरा किया सच सब होए। झूठा किस को आखिए साह, दूजा नहीं कोए। सबना विच तू वरतदा साह, सब तुझ है त्यावह दिन रात। सब तुझ ही थावहु मांग दे मेरे साह, तू सब न कर है एक दात। सब को

0: मर्तबा रंग परंगिया ने एक ना जपन करतबा नियांद्र दियो सब किस जान ला सब किस तेरा बस तेरा कर पला तेरा कर आनंद बधाई तुत कर मर महता तेज अपनाया पजार सर्व कला भरपूर इस जतकता नानक दसन दास उदया गए बिनमता।
1: ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦੇਵ ਸਰਾਧ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ।

सब तेरी वडियाई। कहो नानक सब तेरी वडियाई। कोई नाम न जाने मेरा, फिरत फिरत प्रभ आया, परया तो शरनाए। नानक की प्रभ बेनती

हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत शाड बिखै बिख खाई। माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो सरनाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो सरनाई। सुख टल गुर सेवी अहनस सहज, दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख हो सिफत।

0: संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा नाम दिवायो, सर्व सुख ना वडाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई सलो।
1: पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत, दिवस रात द्वय दाई दाया, खेलै सगल जगत, चंगियाईयां बुरे

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भाव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी साहब गुरप्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे टुंडे असराज की धुनी श्लोक महला पहला बलहारी गुर अपने दुहाड़ी सदवार जिन मान

चढ़ चढ़ पवे अंगया, नानक जिन करता कारण किया, सो जाने करतार पौड़ी बिन सतगुर के ने ना पायो।

कै संभाले सब नाह, जिन करते करना किया चिंता पे करनी ताह। सो करता चिंता करे जिन उपाया जग, तिस दोहारी स्वास्थ तिस,

0: बड़ा तमाशा। किया खेल बड मेल तमाशा, वाहे गुरु तेरी सब रचना। तो जल थल गगन पयाल पूर रहया, अमृत ते मीठे जाके बचना। महाने ब्रह्माद कुरुद राधक, काल का काल निरंजन जचना। गुर प्रसाद पाइए परमारथ, सत संगत सेती मन खचना। किया खेल बड मेल तमाशा, वाहा गुरु तेरी सब रचना। अगम अनंत अनाद आद जिस कोए न जाने है, शिव बिरंच धर ध्यान नितहे जिस भेद बखाने। निरंकार निरवैर अवर नहीं दूसर कोई, पंजन गण समथ तरण तारण प्रभ सोई। नाना प्रकार जिन जग कियो, जन मथुरा रस ना रस है। श्री सत नाम करता पुरख, गुर रामदास चित है बस।
1: गुरु समरथ गह करिया, ध्रुव बुद्ध समत समारण को। फुन ध्रम तुजा फैरंत सदा, अग पौंज तरंग निवारण को। मथुरा जन जान कही जी साच, सो और कछु न बिचारण को। हर नाम बोहित बड़ो कल में, भाव सागर पार उतारण को। संतत ही सत संगत संग, सो रंग रते जस गावत है। ध्रम पंथ तरयो तरनी तर आप, रहे लिवतार न तावत है। मथुरा पन भाग भले उनके, मन इच्छत ही फल पावत है। रव के सुत को तिन त्रास कहां, जो चरण गुरु चितलावत है।
2: जेह सतगुर सिमरंत, नयन के तिमर मिटे खिन। यह सतगुर सिमरंत, हृदय हर नाम दिनो दिन। यह सतगुर सिमरंत, जिया की तपत मिटावे। यह सतगुर सिमरंत, रिद सिद्ध नव निध पावे। सोई रामदास गुरु बलपन, मिल संगत तन तन करो। जे सतगुरु रग प्रभ पाइए, सो सतगुर सिमरो नरो।
3: निर्मल नाम सुधा पर पूरन, शब्द तरंग प्रगटत दिन आगर। गहर गंभीर अथाहत बड, सुपर सदा सब बिदरत नागर। संत

जाय। अहनिस सहज सुभाई, दर्शन परसिय गुरु कै, जन्म मरण दुख जाई। होवे सिफत खसम दी, नूर अर साहो कुर साहो चटिया, तुद डिठे सच्चे पाते साह, माल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पाते साहु, सिर साहा दे साहु, जिस पास बैठिया सोही है, सब नादा वेसाहु। सज्जन सच्चा पाते साहु, सिर साहा दे साहु, जिस पास बैठिया सोही है, सब नादा वेसाहु। सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी, सोरठ महला पंजवा।